0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: किसी को माफ करना बहुत हिम्मत का बड़े दिल वालों का काम है. आफ्टर ऑल हर फीलिंग की जड़ तो दिमाग ही है ना. इसलिए बस एक सिंपल सा उसूल बना लें, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट. माफ करें और भूल जाएं. इतना हमेशा याद रखें कि दिल में नफरत और बदले की फीलिंग को पाल कर रिश्ते कभी मजबूत नहीं बन सकते. इसलिए अपनी और बाकी सब की खुशी के लिए जस्ट स्टिक टू दोज थॉट्स दैट गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड उन थॉट्स को निकाल कर बाहर फेंक दें जो आपका दिल दुखाती है.

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। सैंडी ग्रीनबर्ग नाम का एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, पर पुअर फैमिली से था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने को गया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई आंख की डिजीज हो गई, जो टाइम पर डिटेक्ट ना होने की वजह से सैंडी की आइट साइट चली गई। पर पढ़ाई उसने तब भी जारी रखी। पता कैसे? उसके हॉस्टल का रूममेट रोज रात को उसे टेक्स्ट बुक्स पढ़कर सुनाया करता था। अच्छा, इस सिचुएशन में अब खुद को रखें, अब खुद को ऑनेस्टली आंसर करें कि अगर आपके रूममेट पर कोई ऐसी मुसीबत आती, क्या आप अपना वक्त देते उसे, पढ़ते टेक्स्ट बुक्स रात को उसकी मदद के लिए? रोज अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। हाउ कैन आई गिव बैक टू अदर्स? चाहे आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, देयर विल ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक। आप किसी को वक्त देकर मदद कर सकते हैं, कई बार पैसा देकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गिव योरसेल्फ योर हार्ट एंड सोल टू लिव स्मार्टली फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर अदर्स टू।

अपने मनपसंद साथी का साथ हो तो हर मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसानी से कट जाता है। ये उदासियाँ, ये बेबसी जो तुम हो पास कुछ नहीं, दिल में मचल जाएं कहीं वो ख्वाहिशें जगा दो। अनजान राहें, अजनबी सफर, कब तक मैं रहूं तन्हा, कट जाएगा हर रास्ता जो तुम कदम से कदम मिला लो। फिजा महके खुशबू से चांद तारे उतर आए वहीं, मेरे दिल के अंधेरों में कहीं यूं महफिलें सजा दो। मेरी जुस्तजू हो मेरी आरजू, ना जुदा रहा करो मुझसे, मुझे इश्क है हाँ तुमसे, अब जरा सा मुस्कुरा दो।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाना, उत्पो चलते आप कर चीना, आपे तत् पछाण, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन में रहण रहण में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख में नार नार में पुरख, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला।

राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किछ कहण ना जाई बसता गोचर भाई रहाओ मोल नाही किछ करने जोगा क्या को कह सुनावै कथन कहण को सोझी नाही जो पेखै तिस बन आवै सोई जाने करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गत मित आपे जाने हरे आपे पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आ गाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है एह जग लूटिया ते बैरी लै बादे सतगुर परमेसर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता श्री उपर रखवारा बेप्रवाह रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा पूर्ण होए मिलो सुखदाई ऊन न काई बाता तत्सार परम पद पाया छोड़ न कत हूं जाता।

दस पातो पंच संगीता एकै पीतर साथे। भिन्न भिन्न होए भाव दिखावै सबो निरारी पाखे। घर घर निरत होवै दिन राती कटकट वाजै तूरा। एक नचावै एक पवावै एक आए जाए होए तूरा। कहो नानक सो बहुर ना नाचै जिस गुर भेटै पूरा। राम कली महला पंजवां। ओवंकार एक तुन एक है रागा लापै। एका देसी एक दिखावै एको रया व्यापै। एका

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चालै बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कालै फेरी फेर ना होवै कभी एक शब्द बंद पालै नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावै पावै इहो नृतकारी जन्म ना आवै जे को अपने ठाकर पावै कोट मद इहो कीर्तन गावै साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली।

भेद, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन है मैं पवन सम

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांदे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरना जोग, नह बिनसै अविनासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया। राम कली

0: जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगै टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सद बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा हाँ तेरा तू मैं मन बूठा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन टॉप लिंक लोन एंड लीजिंग। तुहाडा ट्रक ट्रेलर दा लोन कितों नहीं हो रहा जां तुसी यूज्ड ट्रक खरीदने हन ते सानू कॉल करो 204-480-9600 जां ऑनलाइन विजिट करो toplinkfinancial.com।